0: त्यसैले दान गरौं, सकेको गरौं सबैले गरौं।
1: अनुरोध शुक्ला हिलेटार शिवालय क्षेत्र संरक्षण समिति, शुक्ला गण्डकी 8 तनहुँ।

0: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी दीपावली छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बत 1147 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण शिवर सदस्य सेवाग्राही कर्मचारी शुभचिन्तक तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष सूर्य देवी सिग्देल एवं खैरेनटार महिला बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 6 खैरेनटार परिवार,
2: अध्यक्ष मिलन पौडेल एवं नेपाल वत्त तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा परिवार,
1: अध्यक्ष मान कुमार तिमला एवं उन्नति कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार दुलेगौड़ा, फोन नम्बर 0 65 4 14 255,
2: अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद भट्टराई एवं नवज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 8 फिर्दी परिवार।
3: टीवीएस कंपनी का विभिन्न मॉडल का मोटरसाइकिल र स्कूटर एंजल राइडर्स प्राली दुलेगौड़ा में। टीवीएस कंपनी का बाइक र स्कूटर को खरीद बिक्री सब ब्रांड का पार्ट्स र सर्विसिंग गुणस्तरीय भरपर्दो र विश्वासिलो सेवा का लागि सम्झनुहोस् टीवीएस शोरूम एंड सर्विस सेंटर एंजल राइडर्स प्राली शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा प्राइम बैंक संगे शुक्ला गण्डकी एफएम को पारिपट्टी। मोबाइल नंबर 98560309 र 97065020209।
4: टीवीएस साथ छ हाम्रो।
2: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी दीपावली छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बत 1147 पावन अवसरमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारी सेवाग्राही शुभेच्छुक तथा समस्त नेपालीहरूमा सुस्वास्थ्य एवं आर्थिक समुन्नतिको लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोप्राइटर उमेश यादव, सगरमाथा डेन्टल, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौड़ा, मोबाइल 98560974999।
0: प्रोप्राइटर पास्ता राजु श्रेष्ठ, सेन्जा चस्मा घर र सेन्जा मेडिकल हल, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौड़ा, बनकेवा चोक, मोबाइल नम्बर 98066013195।
5: प्रोप्राइटर सुन्दर बस्तेल, कालिका मेडिकल, शुक्ला गण्डकी 6, खैरेनटार, हुलाक अगाडि तीनखोले जाने बाटो, मोबाइल नम्बर 98462876058।
6: बुद्ध डेन्टल केयर, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौड़ा, मोबाइल 98468052712। दाँत सफा गर्ने, टल्काउने, दाँत भर्ने, दाँत राख्ने, निकाल्ने, जरीदेखि उपचार गर्ने तथा दाँतका सम्पूर्ण उपचार गरिन्छ।
1: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी दीपावली छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बत 1147 पावन अवसरमा सम्पूर्ण शेयर सदस्य सेवाग्राही कर्मचारी शुभचिन्तक तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: अध्यक्ष देवी भक्त राणा एवं तपाई हाम्रो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौड़ा परिवार,
1: अध्यक्ष खिम बहादुर कुमाल एवं रूपान्तर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 6, खैरेनटार परिवार,
2: अध्यक्ष दोग बहादुर तामाङ एवं नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौड़ा परिवार,
1: अध्यक्ष तीर्थराज गर्तौला एवं सिद्धार्थ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 3, कवासी परिवार,
6: अध्यक्ष महेश्वर भट्टराई एवं शुक्ला कृषि पर्यटन सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौड़ा।

0: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ शुक्लगण्डकी एफएम 97.6।
1: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बत 1147 पावन अवसरमा यस संस्थाका पदाधिकारी, सदस्य, टोलवासी, सामाजिक संघ संस्थामा क्रियाशील महानुभाव, बुद्धिजीवी एवं सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: अध्यक्ष रजनी थापा एवं उन्नतिशील आमा समूह शुक्लागण्डकी चार दुलेगौड़ा परिवार।
3: मधु पौडेल अध्यक्ष एवं दुलेगौड़ा आमा समूह शुक्लागण्डकी चार दुलेगौड़ा परिवार।
4: टीवीएस कंपनी का विभिन्न मोडल का मोटरसाइकिल र स्कूटर एंजल राइडर्स प्राली दुलेगौड़ा में। टीवीएस कंपनी का बाइक र स्कूटर को खरीद बिक्री सब ब्रांड का पार्ट्स र सर्विसिंग गुणस्तरीय भरपर्दो र विश्वासिलो सेवा का लागि सम्झनुहोस् टीवीएस शोरूम एंड सर्विस सेंटर एंजल राइडर्स प्राली शुक्लागण्डकी चार दुलेगौड़ा प्राइम बैंक संगे शुक्लागण्डकी एफएम को तारीपट्टी। मोबाइल नंबर 98560309982 र 97065220।

0: त्यसैले दान गरौं, सकेको गरौं सबैले गरौं।
1: अनुरोध शुक्ला हिलेटार शिवालय क्षेत्र संरक्षण समिति शुक्ला गण्डकी 8 तन हो।
2: टीवीएस कंपनी का विभिन्न मोडल का मोटरसाइकल र स्कूटर एंजल राइडर्स प्राली दुलेगौड़ा में टीवीएस कंपनी का बाइक र स्कूटर को खरीद बिक्री सब ब्रांड का पार्ट्स र सर्विसिंग गुणस्तरीय भरपर्दो र विश्वासिलो सेवा का लागि सम्झनुहोस् टीवीएस शोरूम एंड सर्विस सेंटर एंजल राइडर्स प्राली शुक्ला गंडकी 4 दुलेगौड़ा प्राइम बैंक संगे शुक्ला गंडकी एफएम को पारीपट्टी मोबाइल नंबर 98560309

0: टीवीएस साथ छ हाम्रो।
1: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बन्ध 1147 पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, शुभचिन्तक, शुभेच्छुक, आफन्तजनहरू साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सँगै उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: जीके रेफ्रिजरेटर, शुक्ला गण्डकी 4, दोलेगौंडा, दिती चोक, नेवार समाज, सटर लाइन। मोबाइल 9856044042।
1: प्रोपाइटर प्रदीप मल्ल, मल्ल कलर हाउस एन्ड इन्टेरियर डिजाइन, शुक्ला गण्डकी 8, ढोरफिर्दी, तनहु। मोबाइल 9856051532। रंगरोगनमा 3-10 वर्षको ग्यारेन्टी, पेरिस, पुटिङ, टेक्चर गर्नुका साथै पुरानो घर लिकेज भएमा ग्यारेन्टीका साथ वाटर प्रुफिङ गरिन्छ।
2: प्रोपाइटर दीपक नेपाली, दीपक चाउमिन उद्योग, शुक्ला गण्डकी 7, स्याउली बजार। मोबाइल 9865093625।
1: प्रोपाइटर कृष्ण प्रसाद भूषाल, युनिभर्सल कम्प्युटर सप्लायर, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौडा, तनहु। मोबाइल 9856060242।
2: प्रोपाइटर दिनेश श्रेष्ठ, निकेश श्रेष्ठ, इन्द्रेणी रंग पसल, शुक्ला गण्डकी 4, दोलेगौंडा, बनकेवा चोक। मोबाइल 9858500508।
1: सिम्स केयर गिवर्स ट्रेनिङ, केयर विथ कम्प्यासन, सर्भ विथ हार्ट।
2: सिप सिक्नुहोस्, भविष्य सुनिश्चित बनाउनुहोस्। सिटी भिटी द्वारा सम्बन्धन प्राप्त सिम्स केयर गिभर्स दुलीगौड़ामा। सिटी भिटी को पाठ्यक्रम आधारित 390 घंटा तालिम।
1: हाम्रा विशेषताहरू:
2: अनुभवी एवं दक्ष प्रशिक्षकबाट प्रशिक्षण,
1: व्यावहारिक र प्रयोगात्मक सिकाई,
2: रोजगारको लागि मार्गदर्शन तथा सहयोग,
1: सिप मूलक गुणस्तरीय र प्रमाणकारी तालिम,
2: स्वास्थ्य क्षेत्रमा करियर बनाउन उत्कृष्ट अवसर। भर्ना गर्ने अन्तिम मिति 2083 साल भदौ 31 गते सम्म।
1: स्थान सिम्स केयर गिभर्स, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौडा, तनहु।
2: सम्पर्क 9856044343, 9801443688, 9801443688, 9560071773।
1: डोन्ट मिस दिस अपर्चुनिटी।
3: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बन्ध 1147 पावन अवसरमा सम्पूर्ण उपभोक्ता, कर्मचारी, शुभेच्छुक एवं स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूमा सुख, सुस्वास्थ्य, शान्ति, समृद्धि, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
4: अध्यक्ष रामचन्द्र उपाध्याय एवं खैरेन्टार खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति परिवार, शुक्ला गण्डकी 6, खैरेन्टार।
5: अध्यक्ष टेकनाथ सुवेदी एवं कपासेटार खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति, शुक्ला गण्डकी 3, कवासे परिवार।
4: अध्यक्ष राजुराम श्रेष्ठ एवं दुलेगौडा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति परिवार, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौडा।
6: अध्यक्ष काशी प्रसाद जोशी एवं बेलचौतारा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति, शुक्ला गण्डकी 5, बेलचौतारा।
7: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी 97.6 मेगाहर्ज।

0: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्वत 1147 पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, शुभचिन्तक, शुभेच्छुक आफन्तजनहरू साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सँगै उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोपाइटर शिव पौडेल, राधा स्टेशनरी स्टोर, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौंडा। फोन 98 560 33 384। प्रोपाइटर शिव गर्तौला, शुक्ला गण्डकी हाइड्रोलिक ब्लक उद्योग, शुक्ला गण्डकी 2, गाछे पानी। फोन 98 560 34 676। प्रोपाइटर सुरेन्द्र पौडेल, सन्देश ट्रेडर, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौंडा। फोन 98 560 62 676। प्रोपाइटर आनन्द सुन्दर श्रेष्ठ, सुन्दर अटो वर्क, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौंडा। फोन 98 560 35 921। प्रोपाइटर धन बहादुर विश्वकर्मा, आनन्द ज्वेलर्स, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौंडा, भित्री बजार। फोन 98 461 12 988।
2: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बन्ध 1147 पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, शुभचिन्तक, शुभेच्छुक आफन्तजनहरू साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सँगै उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
3: प्रोपाइटर उत्तम मल्ल, ढोरबराही बेकरी, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौंडा, हेल्प पोस्ट चोक। मोबाइल 98 141 70 223।
2: प्रोपाइटर सुजन सुवेदी, केक टाउन बेकरी एण्ड क्याफे, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौंडा। मोबाइल 97 160 36 456 र 98 166 62 609। टिकटक केक टाउन बेकरी क्याफे।
0: प्रोपाइटर रमानन्द चौधरी, चौधरी तरकारी पसल, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौंडा। मोबाइल 98 460 66 289।
4: प्रोपाइटर ऋषि आचार्य, ह्याप्पी फ्यामिली स्टोर, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौंडा। मोबाइल नम्बर 98 464 0672।
3: प्रोपाइटर मनराज गुरुङ, कृष्णी कलेक्सन, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 4, दुलेगौंडा। मोबाइल 98 171 64 131।
5: TVS कंपनी का विभिन्न मोडल का मोटरसाइकल र स्कूटर एंजल राइडर्स प्राली दुलेगौड़ा में। TVS कंपनी का बाइक र स्कूटर को खरीद बिक्री, सबै ब्रांड का पार्ट्स र सर्विसिंग, गुणस्तरीय, भरपर्दो र विश्वासिलो सेवा का लागि सम्झनुहोस् TVS शोरूम एंड सर्विस सेंटर, एंजल राइडर्स प्राली, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौड़ा, प्राइम बैंक सँगै, शुक्ला गण्डकी FM को पारीपट्टी। मोबाइल नम्बर 98 560 30 982 र 97 065 20 209।
6: TVS साथ छ हाम्रो।
7: ल छोरी, हामीलाई ज्वाइँ साहब साह्रै मन पर्यो, बिहे गर्ने नगर्ने बाँकी तिम्रो निर्णय।
8: बिहे त गर्छु तर एउटा शर्तमा मात्र।
7: के शर्त हो त्यस्तो, सुनाउन त हामी पनि।
8: बिहेका सबै गरगहना खैरेनी टारको रामदान सुनचाँदी पसलबाटै ल्याइदिनु पर्छ। आधुनिक र आकर्षक डिजाइनका 24 क्यारेटका तयारी गरगहना ग्यारेन्टीका साथ पोखराकै मूल्यमा पाइन्छ। राशि अनुसारका पत्थर, पुराना गरगहना सँग नयाँ साथ फेर गर्ने व्यवस्था भएको र कम्प्युटर तौल प्रविधिबाट नाप तौल गरिने एकमात्र विश्वासिलो ठाउँ।
7: रामदाम सुनचाँदी पसल, शुक्ला गण्डकी 6, खैरनी 4, उडा कार्यालयको अगाडि। सम्पर्क नम्बर 065 412 200 412 160 र 98 460 78 022।
9: शुक्ला गण्डकी FM 97.6।

0: शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बत 1147 को पावन अवसरमा ओडावासी, टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी, व्यवसायी, शुभचिन्तक एवं स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: सचिन भुजेल, अध्यक्ष, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका, वडा नम्बर 3, बनकेवा एवं वडा परिवार।
0: खड्कसिंह थापा मगर, अध्यक्ष, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका, वार्ड नम्बर 7, खैरेनीटार एवं वडा परिवार।
1: राजेन्द्र भट्टराई छेत्री, अध्यक्ष, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका, वडा नम्बर 10, छद्दी एवं वडा परिवार।
0: शिव बहादुर आले, वडा अध्यक्ष एवं मेगदे गाउँपालिका, वार्ड नम्बर 5, परिवार।
2: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बन्ध 1147 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, शुभचिन्तक, शुभेच्छुक, आफन्तजनहरू साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि सँगै उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
3: प्रोप्राइटर ईश्वर कुमार श्रेष्ठ, पासा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर, शुक्ला गण्डकी 3, पौवा, मोबाइल नम्बर 98151 68222।
4: टीवीएस कंपनी का विभिन्न मोडल का मोटरसाइकिल र स्कूटर एंजल राइडर्स प्राली दुलेगौड़ा में। टीवीएस कंपनी का बाइक र स्कूटर को खरीद बिक्री, सब ब्रांड का पार्ट्स र सर्विसिंग, गुणस्तरीय, भरपर्दो र विश्वासिलो सेवा का लागि सम्झनुहोस् टीवीएस शोरूम एंड सर्विस सेंटर एंजल राइडर्स प्राली, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौड़ा, प्राइम बैंक सँगै शुक्ला गण्डकी एफएम को पारिपट्टी। मोबाइल नंबर 98560309 र 97065020209।
2: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बत 1147 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, शुभचिन्तक, शुभेच्छुक, आफन्तजनहरू साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि सँगै उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
3: प्रोप्राइटर कृष्ण प्रसाद पौडेल, पीके हार्डवेयर तथा जंगल पार्क रिसोर्ट, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौड़ा, फोन 98560205।
5: प्रोप्राइटर भक्त कुमार रामदाम, रामदाम सुनसादी पसल, शुक्ला गण्डकी 7, खैरेनीटार, फोन 98460 78022।
3: शेयरधनी सदस्य एकराज सिगदेल, शुक्ला गण्डकी 8, ढोरफिर्दी।
5: प्रोप्राइटर तीर्थराज खनाल, बेस्ट कंक्रीट एन्ड ब्लक उद्योग, शुक्ला गण्डकी 2, कोत्रे, फोन 98560 29500।
3: प्रोप्राइटर बिरसना श्रेष्ठ, असीम अस्मी फेन्सी स्टोर, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौड़ा, फोन 98461 64 94378।
2: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बत 1147 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण शेयर सदस्य, सेवाग्राही, कर्मचारी, शुभचिन्तक तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
0: अध्यक्ष रुद्र कुमारी गुरूङ, सचिव केशव प्रसाद ढकाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गुरूङ, दुलेगौड़ा सेवा केन्द्र प्रमुख सरस्वती भुजेल एवं पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार, प्रधान कार्यालय पोखरा 10, बुद्ध चोक, दुलेगौड़ा सेवा केन्द्र, शुक्ला गण्डकी 4, बीपी चोक, फोन नम्बर 065414490।

0: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्मत 1147 पावन अवसरमा सेवाग्राही, कर्मचारी, शुभचिन्तक तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। नेपाल बैंक लिमिटेड, शुक्ला गण्डकी 7 खैरेन्टा तनहुँ शाखा परिवार, फोन नम्बर 065412255।
1: टीवीएस कंपनी का विभिन्न मोडल का मोटरसाइकल स्कूटर एंजल राइडर्स प्राली दुलेगौड़ा में। टीवीएस कंपनी का बाइक र स्कूटर को खरीद बिक्री सब ब्रांड का पार्ट्स र सर्विसिंग गुणस्तरीय भरपर्दो र विश्वासिलो सेवा का लागि सम्झनुहोस् टीवीएस शोरूम एंड सर्विस सेंटर एंजल राइडर्स प्राली शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा प्राइम बैंक संगे शुक्ला गण्डकी एफएम को पारीपट्टी। मोबाइल नंबर 9855309982 र 9705620209।
2: TVS साथ छ हाम्रो।
3: शुक्ला गण्डकी FM 97.6।